0: इन्टरनेट गेट कनेक्टेड स्टे कनेक्टेड।
1: नयाँ जडानको लागि सम्पर्क 9028-13-424 र 9058-14-175।
2: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।
3: शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।
1: यति बेला बिहानको ठिक 11 बज्यो।